खुदा है उसमें हर चीज किसी हदफ से होती है, किसी हर चीज का कोई मकसद होता है। अब अगर हर चीज का हदफ अदल है, और मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अदल का क्या मकसद है, अदल क्यों चाहिए? मुझे याद है मैं तालिबे इल्म के दौर में ये सवाल मेरे लिए बन गया कि भाई हर चीज अदल की तरफ खुदा क्यों ले जाना चाहता है। अच्छा, किसी ने कहा कि भाई खुदा चूंकि खुद आदिल है तो ज़मीन पे अदल देखना चाहता है। बात तो सही है, खुदा आदिल है, अदल देखना चाहता है। ये कायनात उसके अस्माए हुस्ना का मजहर है और उसके अस्माए हुस्ना में से एक इसमें आज़म खुदावंद मुताल का अदल है और वो ज़मीन को अदल का नमूना देखना चाहता है। ये बात समझ में आती है, लेकिन अदल के पीछे क्या हासिल होना चाहता है, अदल से क्या हासिल होगा, स्पेशली बंदों को क्या हासिल होगा? अरे अदल से ये होगा कि मिसाल के तौर पर मेरी तनख्वाह 30,000 थी, मेरी तनख्वाह 50,000 हो जाएगी। अरे अदल से ये नसीब होगा, क्या नसीब होना है हमें? इसके ऊपर चंद मिनट्स आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, और इस गुफ्तगु से हमें यह भी फायदा होगा कि अगर हम माशरे में कह रहे हैं हम अदल करना चाहते हैं, ये कैसे चेक करें कि हम अदल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि धोखे तो बहुत होते हैं, इंसान को कुरान पढ़ता रहता है समझता रहता है मैं कारी हूँ, जबकि पता चलता है नहीं कारी नहीं है, सिर्फ तुम अल्फाज जबान से निकाल रहे हो, कुरान तुम्हारे हलक के नीचे नहीं गया। जैसे कि मौला अमीर मोमिनीन ने खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया कि एक ज़माना आएगा जब कुरान से अल्फाज के सिवा कुछ नहीं बचेगा लोगों के पास। तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई क्या हुआ, अदल क्यों चाहिए, अदल की बुनियाद क्या है। अदल की बुनियाद यह है कि हम कह रहे हैं 1,24,000 अम्बिया तशरीफ लाए, तमाम अम्बिया की नबूवत का पैगाम खुलासा हुआ ख़त्मी मरतबत की हयात मुक़दसा और उनके पैगाम के अंदर, और उनका सारा पैगाम खुलासा हो रहा है इतलाक़ की हद में, इजरा की हद में, इम्प्लीमेंट होने की हद में आखिरी इमाम के वजूद मुक़दस के अंदर। अब तक इम्प्लीमेंट थॉरली नहीं हुआ। हम जानते हैं कि भाई अगर खुदा ने मुताल फरमाता है नुरीदो अन्ना मुन्ना आलल्लज़ीना इस्तुज़ईफ़ू फ़िल अर्ज़, हमने चाहा है ज़मीन के कमज़ोर बंदों के ऊपर एहसान करें, नज अलहुम आइम्मा व नज अलहुमुल वारिसीन, हम उनको रहबर बनाएं, हम उनको वारिस बनाएं, आज तक नहीं हुआ। कब यूरोप के ऊपर अल्लाह के मजलूम बंदे वारिस बने, कब एशिया के ऊपर अल्लाह के मजलूम बंदे वारिस बने, हत्ता मशरिक़ी वुस्ता के ऊपर कब अल्लाह के मजलूम बंदे वारिस बने? जस्ता गुरीख्ता चंद चंद साल, अल्लाह के नबी 10-11 साल, मौला अमीर मोमिनीन 4 साल और कुछ, मौला इमाम मुस्तफा 4 चंद महीने बस, उसके बाद हुकूमत कहाँ अदल की हुकूमतें बनी। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आखिरी दौर के अंदर मसलन जमहूरी इस्लामी की सूरत में एक उम्मीद नज़र आती है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर जुल्म का दौर दौरा है, ज़ालिमाना हुकूमतें बनी हुई, खुद हमारे मुल्क के अंदर देख लें। तो भाई वो जो खुदा का वादा है वो सारा का सारा खुलासा हो रहा है आखिरी इमाम की इमामत के अंदर। इमाम की तशरीफ़ आवरी का हदफ क्या है, यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसा कि वो ज़ुल्म व जौर से भरी थी। अच्छा, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे, उसके बाद ज़मीन अदल इंसाफ से भर गई, अब क्या होगा? अब जब अदल इंसाफ से भर गई तो आपके पास पहले पैसे कम थे, अब पैसे ज़्यादा हो गए, ये होना है। पहले मेरे पास एक घर बड़ा था, आपके पास घर था ही नहीं, अब बराबर का हो जाएगा, सबको बराबर के घर मिलेंगे। एक तो बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये फ़र्क होना चाहिए कि इंसाफ अलहदा चीज़ है, मुसावात अलहदा चीज़ है। मुसावात एक हद तक इनाम में, एक हद तक इब्तदा में, यहाँ तक तो हो सकता है, इब्तदा में मुसावात हो सकती है। वो कैसे, सारे बच्चों को एक जैसी तालीम मिलनी चाहिए, उनका हक है कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही डिफरेंस दे देंगे तो फिर बच्चों के कैरियर तो ज़ाहिर के मुख्तलिफ होंगे। एक बच्चे को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है जहाँ पढ़ाने वाले सारे के सारे टॉप ऑफ द लाइन है, और एक बच्चे को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है जहाँ पर कुछ है ही नहीं, मास मर्डर है, कत्लेआम हो रहा है वहाँ बच्चों का, ये तो मुसावात नहीं है। मुसावात कहाँ पर चाहिए, मुसावात स्टार्टिंग पॉइंट में मुसावात चाहिए, सबको बराबर की जगह से शुरू करवाओ। अगर रेस शुरू करवानी है तो कम से कम

स्टार्टिंग लाइन तो एक जैसी हो, एक ही स्टार्टिंग लाइन आगे, एक ही स्टार्टिंग लाइन पीछे है, तो कि कहाँ की दौड़ हुई, ये तो मुकाबला ही नहीं हुआ फिर। तो मुसावात यहाँ ज़रूरी है, यह मुसावात ज़रूरी है। अच्छा, अब जिम्मेदारी क्या मुसावात हो सकती है? नहीं, जिम्मेदारी में मुसावात नहीं हो सकती। वो कैसे? भाई मेरा IQ फ़र्ज कर लेते हैं कि 100 है, खुदा मुझे एक जिम्मेदारी देगा, एक का IQ 180 है, उसको भी वही जिम्मेदारी मिलेगी? नहीं, बुनियादी फराइज में मुसावात होगी, सबके ऊपर नमाज वाजिब, सबके ऊपर रोज़ा वाजिब। जिम्मेदारियों में भी मुसावात होगी? नहीं, बहुत फ़र्क होगा, एक के हालात मुख्तलिफ थे, उसकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ होगी। एक आदमी एक ऐसे माशरे के अंदर रह रहा था जहाँ कुफ्र फिस्क फजूर नाफिज हुआ हुआ था, एक आदमी एक ऐसे माहौल के अंदर रह रहा है जहाँ पर फिस्क व फजूर है लेकिन ईमान नाफिज है, ईमान पे अमल करे आसान है, कर सकता है, दोनों से क्या एक ही जैसी जिम्मेदारी मांगी जाएगी? एक आदमी जिंदान में रह रहा है, कैदी बना हुआ है, उसके ऊपर जेलर जुल्म कर रहे हैं, इराकी बेचारे जो कैद में होते थे, एक बंदे खुदा मुझे मिला जो अबू गुरैब में था, बहुत पहले की बात है, ये 88 के करीब की बात है, मेरे ख्याल में 87 86 की बात है, 87। तो वो बंदे खुदा मुझे गुरैब का निकला हुआ मिला था, गुरैब से वो निकला था इराक़ में, फिर इराक़ से भाग कर ईरान आ गया था। तो मुझे मिला तो मैंने पूछा कि वहाँ पर क्या सज़ाएँ देते हैं, कहने का आपके मसलन इस तरह मारते हैं, अजीब गरीब वहशियाना सजाएं, इंसान बता भी नहीं सकता सद्दाम के ज़माने में क्या होता था। मैं आपको अर्ज़ करूं, पता नहीं ये राज कब खुलेंगे, कब, शायद इमाम के आने पर ही खुलेंगे। जो कुछ वहाँ लोगों ने झेला है पता नहीं क्या हुआ है। तो वो बहरहाल कहने का कि वो बहुत ही अजीब अजीब सजाएँ देते थे, और कहने का हमें ये समझ में नहीं आता था कि अब हमें भी खुदा ने ऐसा अजीब कर दिया था कि हमें भी कुछ चीज़ें सज़ा लगने लगती थीं जो अब समझ में नहीं आता कि क्यों सज़ा लग रही थी। मैंने कहा भाई क्या सज़ा लगती थी? कहने का वो एक सज़ा ये देते थे कि नमाज के लिए खड़े नहीं होने देते थे। फजर का वक्त आता था, नमाज के लिए खड़े नहीं होने देते थे। कहने का हम लोग लेटे लेटे नमाज इशा पढ़ते थे। कहने का बाज़ लोग रात को सोते नहीं थे कि हमारा वज़ू ख़राब हो गया ना तो ये वज़ू नहीं करने देंगे, बदबख्त लेटे लेटे नमाज इशा पढ़ते थे। ये ओरिएंटेशन ही कुछ और है, ये फिक्र ही कुछ और है। असल कितनी मुख्तलिफ है। कहने का मुझे ताज्जुब है, यहाँ पे कोई जेली कैदी मारता नहीं है, जेलर मारता नहीं है, लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, नमाज शब के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? वहाँ तो कोड़े पड़ते थे, इसलिए नहीं खड़े होते थे, हम लोग मारते थे वो लोग बहुत ज़्यादा। कहने का बाद औकात नमाज शब पढ़ने की वजह से जेल के बाहर सर्दी में 4-4 घंटे खड़े होना पड़ता था कि क्यों नमाज के लिए खड़े हुए थे। तो लोग फिर भी करते थे कि चलो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तो नमाज शब पढ़ लेंगे ना, चलो 4 घंटे खड़ा कर ले। ये बहुत अजीब मामले हैं, इसमें कहाँ मुसावात हो सकती है? इसकी एक नमाज शब, हम लोग सारी ज़िंदगी शायद नमाज शब पढ़ते रहे अपने ACs के अंदर बैठकर, वो कोई मुकाबला है? इनका एक तिलावत कुरान करना जिसके ऊपर कोड़े खाएं बेचारे, हम लोगों के पूरे पूरे कुरान पढ़ने के क्या बराबर हो सकते हैं? क्या कैसे बराबर हो सकते? हम लोग मज़े में सो, जो सैयदुश्शुहदा ने मिना के खुतबे में जुमला इरशाद फरमाया, दीन की खातिर तुमने क्या मुसीबत बर्दाश्त की बताओ, किससे लड़ो? अच्छा हम लोग ये कहेंगे नहीं हमने सिपाही साहबा को बर्दाश्त किया, जंगे सिफिन 10 महीने चली थी, फौजियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, आम जिंदगी से निकल के जाना होता था, 10-10 महीने लोग कारोबार ज़राअत जानवर छोड़ के गए थे, वापस आए थे तो कूफा की इकॉनमी ख़त्म हो गई थी। इस पर किसी ने अगर इमाम पे एतराज़ किया तो लोगों ने कहा ये मुनाफिक है, अपने इमाम की पैरवी नहीं करता। हम लोगों को तो अगर मजलिस दोपहर को रख लो तो मजलिस में कोई नहीं आएगा चूँकि सब जॉब पर जाएंगे, कहाँ मुकाबला है? जो हमारे पाकिस्तान से बाहर दोस्त अहबाब होते हैं ना, वो पता नहीं बाद अवत क्या क्या कहते रहते हैं पाकिस्तान ये। मैंने उनसे कहा भाई
तुम लोग क्या वीकेंड पे मजलिस नहीं रखें तो एक बंदा यहाँ सेंटर में नहीं आएगा।

काम से मुकाबला कर रहे हो? हम लोग कहाँ मुकाबला कर रहे हैं? तो वो मसलन कूफियों को जो हम इतना चिक चिक कहते रहते हैं, वो ये थे ये वो थे, 10 महीने जंगे सिफीन चली थी, बंदे मर गए थे सबके सब। जंगे सिफीन में कितने बंदे मरे अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। ये 5-6 हज़ार की बातें नहीं है, 10-ही हज़ार की बातें हैं। ये जंगे सिफीन 10 महीने जंग थी, एक रात लैलतुल हरीर आई थी, नहीं मालूम कितने हज़ार लोग उस एक रात के अंधेरे में मरे हैं। लैलतुल हरीर एक रात के अंधेरे में मरे हैं लोग, नहीं मालूम कितने, 10-ही 10 हज़ार से ऊपर है फिगर। उस ज़माने की आबादी सोचो, 10 हज़ार एक रात में सोचो। तो ये इम्तिहान थे। अच्छा, यहाँ पे मुसावात है? नहीं, यहाँ पे मुसावात नहीं होती, इसका अजर कहीं ज़्यादा होगा चाहे अमल छोटा हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मुसावात हो सकती है, बाद में जिम्मेदारी में मुसावात नहीं होती, अजर में मुसावात नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक क्लास के सारे बच्चों को मुसावी नंबर दे दिए जाए, ये क्या पागलपना है? ये कौन सा, ये तो खिलाफ अदल है। तो अदल का मतलब मुसावात नहीं होता है। अगर कोई ये समझ रहा है अदल का मतलब मुसावात होगा, अब मिसाल के तौर पर मैं ज़िंदगी में कोई मेहनत नहीं करूँगा, मुझे भी उतनी तनख्वाह मिलेगी जितना कोई सर पीट लेगा मेहनत कर करके, उसको भी उतनी तनख्वाह मिलेगी, मज़े आएंगे, फिर हम काम ही नहीं करेंगे तनख्वाह मिलती रहेंगी, ये नहीं होगा। अदल होगा, अदल होगा, अदल मुसावात नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये था, इमाम तशरीफ़ लाएंगे, अदल होगा, कोई जुल्म नहीं कर सकेगा, कोई जुल्म नहीं कर सकेगा, फिर क्या होगा? अदल हो गया, ये तो मैंने बहुत ही पस्त अदल की मिसाल दी है, माल के अदल की मिसाल दी है। फिलहाल असर अदल तो होता है अकदार में, एहतराम में। हमारे माशरे के अंदर दौलत पे एहतराम है, ताकत पे एहतराम है, शोहरत पे एहतराम है। नहीं, इस्लाम का निज़ाम कहता है नहीं, इंसान का इंसान होने पर एहतराम है, अल्लाह का बंदा हुआ ज़्यादा एहतराम है, बंदगी करेगा ज़्यादा एहतराम है। ताकतवर होने पे एहतराम ज़रा भी नहीं है, कोई ताकतवर होने पे एहतराम कसब करे, अल्लाह ने वादा नहीं किया उसको कि इज़्ज़त देगा, फिर उसका इसकी इज़्ज़त दर हकीकत ख़त्म हो जाएगी। तो इधर अदल होगा, वैल्यूज़ में अदल होगा, पैसे के अंदर अदल होगा, अल्लाह के नज़दीक क़ुर्ब में अदल। इस अदल के बाद क्या होगा? पैसे में अदल हो गया, वैल्यूज़ में भी अदल हो गया, अब क्या होगा? अब सिर्फ एक काम होगा जो अब आप शायद मैं आपके सामने कहूँ ना, आप कहेंगे बस ये अब क्या होगा? अब लोगों के लिए अल्लाह की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा, अब ये होगा। अब वही जो तज़किया नफ्स था अब आसान हो जाएगा, अब अल्लाह की हुज्जत पूरी हो जाएगी, ये होगा। जो सब कुछ होने के बाद होगा वो क्या होगा? फिर होगा कद अफलाहा मन ज़क्काहा। अब भी अगर कोई तज़किया नफ्स ना करे उस पर हुज्जत पूरी हो चुकी होगी, अब क्यों नहीं किया? अब क्यों नहीं किया? अब इसका मतलब क्या है? क्या गैबत में खुदा का हदफ बरतरफ हो चुका होता है, कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है? नहीं। कद अफलाहा मन ज़क्काहा आज भी है, इमाम तशरीफ लाएंगे, निज़ाम अदल कायम करेंगे, उस वक्त भी होगा, उस वक्त हुज्जत पूरी हो चुकी होगी। आज मुमकिन है कोई कहे अगर मैं इस माशरे में नहीं होता ना तो मैं तज़किया आसानी से कर लेता। इमाम तशरीफ लाएंगे, एक ऐसा माशरा कायम करेंगे जहाँ तज़किया नफ्स के लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, फिर कहा जाएगा अब करो, अब भी नहीं किया फिर क़यामत है, फिर खुदा का अज़ाब। अब भी नहीं किया, अब क्यों नहीं किया? तो अज़ीज़ाने मोहतरम, सब कुछ होने के बाद जो मुतालबा होगा वही कद अफलाहा मन ज़क्काहा होगा, वही मुतालबा होगा। अदल की वैल्यू इंसानों को इंसान बनाने पर है, अदल के। अच्छा, इसका अदल में क्या किरदार होगा? अदल का किरदार इसमें यह होगा कि जहाँ पर अदल होता है वहाँ तज़किया आसान हो जाता है, जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ तज़किया बहुत सख्त हो जाता है, जहाँ पे जुल्म होता है वहाँ इंसान की सलाहियतें परवान नहीं चढ़ती। अब आप, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मसलन यजीदी माहौल में कोई मुत्तकी हो आसान है? बहुत मुश्किल है। आज के दौर में हलाल कमाना आसान है? वाकई अगर कोई हलाल ढूंढे, वाकई अगर कोई हलाल ढूंढे तो मसलन एक बंदे खुदा था, उसको पता था कि भाई अगर हलाल का लुकमा खा ले इंसान तो क्या होता है, हलाल की रोटी खाए तो क्या होता है। तो वो ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, लोगों से पूछता रहा, भाई कोई है किसी के पास हलाल का खाना हो

0: वो ख्वाब जो अपने अंदर हजारों उम्मीदें समाए हुए, कमसन बच्चों के खून ने पाकीजा किया जिसे, ये खाक अब आसमान में नए रंग बिखेर रही है। इस महकती खाक में सांस लेते हैं।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजारों साल गुजर गए, हजरत आदम को ज़मीन पर मबूत हुए, मगर आज भी इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर हक़ और बातिल की जंग जारी है। दुनिया बढ़ती जाएगी, गुज़रते जाएंगे लोग, बादशाहतें, मुमलिकतें, लेकिन हमारी गुफ्तगू उनसे है कि जिनके अंदर अभी भी हक़ की तलाश जारी है, या यूँ कहें कि उनके यहाँ फितरत

हसरत का बीज अभी बाकी है कि जिसको हक की आबियारी चाहिए। इसी काम को लेकर हम आपकी खिदमत में अभी ख़याबान वली असर स्ट्रीट, जो कि तेहरान की एक बहुत बड़ी बल्कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट कहलाती है, हम आपके लिए लेकर आए हैं जंग से पहले, जंग के दौरान और अभी के हालात कि जो सीज़ फायर में चल रहे हैं, कि जहां अभी भी इम्कान है कि शायद कभी भी जंग शुरू हो जाए। अब हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक तो वो रिवायत कि जहां पर अमेरिका इसराइल ने मिसाइल मारे, वो जगह जहां पर लोग रहते थे, हॉस्पिटल, स्कूल, कि जहां बच्चे पढ़ने की नीयत से आए थे। दूसरा वो हम आपको दिखाएंगे कि ये पहले कैसे रह रहे थे और अब ये कैसे रह रहे हैं, क्या फ़र्क आया है इनकी ज़िंदगी के अंदर। तीसरा हम आपको उस जगह भी लेकर जाएंगे कि जहां पर रहबर को शहीद किया गया, एक ऐसा रहबर कि जिसने जुल्म के मुकाबले में दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवरों को सामने झुकना पसंद नहीं किया बल्कि तवक्कुल अल्लाह किया और तौहीद की हक्कानियत को इस दुनिया में पेश किया। यकीनन ये ख़याबान वली असर हमें इमाम ज़माना की भी याद दिलाती है और ये इनकलाब उसी ज़हूर की तरफ बढ़ता है। हम आपको दिखाएंगे कि असल रिवायत इलाही क्या है।

0: इमारतें फिर बन जाएंगी, मगर जो इन पर गुजरी है वो रातें वो लम्हे पलट नहीं सकते, वो जो बिछड़े हैं वो लौट नहीं सकते, वो दीवारों पर लगी तस्वीरें, ताकतों पर रखी किताबें जो पारा पारा हो गई, खाक में तहरीरें बिखर गई।
1: तेहरान का ये इलाका रिसालत का इलाका है जो कि एक रिहायशी इलाका है। 10 मार्च को यहाँ पर एक नहीं कई मिसाइल मारे गए। दुश्मन जो ये दावा करता है कि हम बड़ा प्रिसाइज, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम किसी को मार सकते हैं, मगर उसने एक ही जगह पर 300 घरों को बर्बाद कर दिया। 20 लोग शहीद हुए जिसमें से 12 लोग एक ही फैमिली के थे। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लाशें भी कई दिनों के बाद मिली। मलबा आज इतने दिन गुजरने के बाद भी आपके सामने है कि ये दुश्मन चाहता यही था कि आम इंसानों का कत्ल करे।

दोपहर का वक्त, रोजे की हालत में कितने लोग अपने घरों से इस उम्मीद से गए होंगे जब वो आएंगे तो इफ्तार करेंगे। कितने लोगों ने इन घरों में ये ख्वाब देखे होंगे कि वो अपने बच्चों के लिए शादी करेंगे। कितने लोग पढ़ने के लिए, कितने बच्चे रोज़ा रखकर इस नीयत से घर से निकले होंगे कि आज शाम को अफ्तारी करेंगे। गोके हालत जंग थी, शायद 18 या 19 रमज़ान थी और शबे कदर की अमाल की तैयारियां भी होंगी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि जो घर से निकले हैं जब लौटेंगे तो उनके घर घर नहीं खाक हो चुके। यहाँ पे जो शहीद हो गए या जिनके घर ख़त्म हो गए, यकीनन उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आज हम अगर इतने अरसे के बाद यहाँ पर आए हैं तो हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो जुल्म अमेरिका और इसराइल ने किया है उसे दुनिया तक बताया जाए। यही

0: जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक ही फैमिली के लोग, मुझे बाकी नहीं मगर शहीद मेहदी यार उन जवानों में से एक जवान है कि जैसा कि आपको पता है कि ईरान में बहुत ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है और हाल ही में इनकी टीम भी वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने के लिए ट्रैवल कर चुकी है। ये भी ये चाहता होगा कि जब ये मैच हो तो ये अपने दादा के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसको देखे, मगर इसका कसूर क्या था? इसका कसूर यही था कि ये उस कौम और उस मिल्लत का जवान था कि जो जुल्म के मुकाबले में खड़ा होते हैं और मज़लूमाने जहान का साथ देते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि मज़लूम का साथ दो, जुल्म के मुकाबले में खड़े हो, और ये शहादत सआदत है। ज़ाहिरन ये सब चले गए मगर इनका खून जो है वो आने वाली नस्लों को जिंदा रखेगा।
1: आसमान पर रोशनी और बम की सदाएं, अस्पताल में भगदड़, एमरजेंसी में मरीज, और कोई वजूद उन हालात में दुनिया में आ रहा है कि बारूद की खुशबू फैली हुई है। नर्सें व्हीलचेयर को दौड़ाती, कोई नौजाद बच्चों को गोदों में उठाती, मगर कोई कहां इन दर्दों को समझेगा जहां जख्म खाक से भरे हुए हैं।
0: हम लोग जहां अभी खड़े हैं, ये एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है गांधी। न सिर्फ हॉस्पिटल है बल्कि यहाँ पे इसके बराबर में इसका होटल भी है, और ये एक बड़ा मॉडर्न और बड़ा एक्यूब जो है वो हॉस्पिटल है। क्यों इसको अमेरिका ने मारा? ताकि लोगों के अंदर इस्तेराब पैदा हो। एक जगह पर मिसाइल मारते थे और फिर उसके बाद हॉस्पिटल को भी हिट करते थे, ताकि वो जो लोग इलाज के लिए आए हैं वो कहाँ जाएँ, लोगों के अंदर बेचैनी हो। जिस तरह इन्होंने गजा के अंदर हॉस्पिटलों को बर्बाद किया, यहाँ पर भी उन्होंने कई हॉस्पिटलों को हिट किया। ईरान के अंदर ये कहने को हम सिर्फ आर्मी या निज़ामी जगह को मारने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मार रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शहरों में किसी शहर को मारा गया या मिसाइल मारे गए, वो तेहरान शहर है। यहाँ पर न सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि हेरिटेज कल्चर की जगह, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, यानी हर वो चीज़ जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में उसका हिस्सा है, जहाँ वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजारता है। कहने को तो ये कहते थे कि हम तो ईरानी लोगों की मदद करना चाहते हैं, मगर ये कैसी मदद थी कि जब हॉस्पिटलों को वीरान कर दिया, मदरसों को खाक में दबा दिया, यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर रहे हैं, पुलों को तोड़ रहे हैं, ये कौन सी मदद है, ये कौन सी इंसानियत है? देखें, ये सब तो दोबारा बन जाएगा, मगर दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि जुल्म कैसा होता है और जालिम के मुकाबले में डट कर खड़े होना कैसे होता है। तकरीबन 60 के करीब हॉस्पिटल और क्लिनिक को जो है वो अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों ने, मिसाइलों ने निशाना बनाया, और तकरीबन 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसें जो हैं वो हिट की गई। वो ये तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो इंसानियत की बका और एक ह्यूमन के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन न जाने क्यों इंसानी हकूक़ के अलम

सरदार इस मामले में खामोश हो गए, कोई आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। देखें यहाँ पर भी इस शहीद बच्चों की तस्वीरें, और ईरानियों ने हर उस जगह को जहाँ पर ये हमले हुए हैं उन्हें यादगार शहदा बना दिया।

ईरान में हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर या यूँ कहें कि 60-70% स्टाफ है वो फीमेल होता है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, नर्सेज हैं, और ना सिर्फ जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद ख्वातीन की है और उसमें अक्सर जो है वो शादीशुदा अपने घर वाली होती हैं, वो भी यही चाहती हैं कि वो अपने घर को सपोर्ट करें और माशरे की भी खिदमत करें। तो आप खुद सोचें कि जब कहीं पर जंग हो, बमबारी होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले लोग कहाँ जाते होंगे? हॉस्पिटल, क्लिनिक और जहाँ पर ये सब कुछ इलाज होता है। लेकिन अगर उन जगहों को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए तो ना सिर्फ हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ मुश्किलात में हैं, बल्कि इसके बाद से लेकर ये तमाम जो स्टाफ है वो भी अपने घरों को बैठा है। एक वीडियो आपने देखी होगी, हम उस हॉस्पिटल तो नहीं जा पाए जहाँ पर एक नर्स ने, जब वहाँ पर मिसाइल लगे हैं तो इनक्यूबेटर से 3 बच्चों को उठाया है और दौड़ती हुई भागी है। वो चाहती तो अपनी जान बचाकर अकेले भाग सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि ये 3 जवान आइंदा इंसानियत का फ्यूचर है, इस कौम का फ्यूचर है, उसे अपने आगोश में लिया और उनकी जान बचाई।

ये कार्ड है पेट्रोल का कि जो सब्सिडाइज पेट्रोल की एक लिमिट है जो यहाँ पे हर किसी को मिलती है, इस पे तकरीबन 2.5 रुपए का लीटर पड़ता है, और अगर आप विदाउट सब्सिडाइज करवाना चाहें तो वो तकरीबन 8 रुपए का है। जंग यहाँ पर है और पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया। कितने दिन हो गए जंग को यहाँ पर, लेकिन आप देखें ना पेट्रोल की किल्लत है ना कोई लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल आराम से मिल रहा है। इज़्ज़ाने मोहतरम, अब आप हक के लिए खड़े हों तो दुश्मन खुद घुटने टेक देता है। ये तकरीबन 180 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, और तकरीबन हमने 20 लीटर जो है वो पेट्रोल डलवाया है। तो अब आप खुद सोच लें कि $1 में कितना पेट्रोल आता होगा।

वो मासूम बच्चियां, वो मेनाब की बेटियां, जो खुद फूल की कलियां थीं, जिनके हाथ किताबों के सफ़े पलटने के लिए थे, जिनके हाथ परिंदों को दाना डालने के लिए थे, जिनकी उम्र मुस्कुराहटों की थी, अचानक खामोशी। परिंदे परवास कर गए मगर खून आलूदा परों के साथ। अभी तो रोजे रखना शुरू किए थे, अभी तो नए कपड़े खरीदने बाबा के साथ जाना था, मगर अफ्तार न हो सका, न ईद तक पहुंच सके। माओ ने खाक से टुकड़ों को उठाया है।

ग्राउंड की पिक्चर है और एक तस्वीर वो है जिसे दुश्मन दिखाना चाहता है, मगर असली तस्वीर जो है वो इलाही तस्वीर है कि इंसान अल्लाह की राह में कैसे होना चाहिए। और जब इंसान खुदा की राह की तरफ बढ़ता है तो खुद ब खुद वो निखर कर सामने आता है, खुद एक नूर की तरह आलम में छा जाता है। आज पूरी दुनिया इस कौम की हिम्मत और बहादुरी की बात कर रही है, तो इस कौम के पास कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ चली गई तो वो रहबर हैं, लेकिन वो भी नहीं गए, क्योंकि शहीद तो हमेशा जिंदा है।

जो कौम ज़ाफ़रान के दानों को अलग एक एक कर सकती है, जो कौम एक कारपेट का डिज़ाइन बनाने के लिए कई साल लगा सकती है, उस कौम में सब्र पाया जाता है और वो सब्र एटम बम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐज़ान मोहतरम, आप देख रहे हैं ये जो डिज़ाइन है, ये जो दरो दीवार है, ये जो नक्काशी है, ये इनका हज़ारों साल ज़्यादा पुराना कल्चर है। और ख़ुद ये डिज़ाइनों की अपनी उम्र देख लें, ये जो दरो दीवार है, ये जो पुराने ज़माने के बाज़ारों के हिसाब से इन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी को उसी के साथ रखा हुआ है, ये कहाँ और अमेरिका कहाँ। यानी ख़ुद अगर इस एक डिज़ाइन को भी हज़ारों साल लगे हैं तो अमेरिका के कितने सालों के बराबर है। वो कहाँ इनकी सिविलाइजेशन को गिराएगा कि जिसके हर चीज़ के रसूख में इल्म और कल्चर पाया जाता हो, तमद्दुन इस्लामी पाया जाता हो। ये वो कौम नहीं कि जो है वो आज के दौर के अंदर अपने माजी को भूल जाती है, ये आज भी उसी तरह खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी। इनके वजूद में मकावमत है, इस्तकामत है। आज के इस दौर में कि जहाँ टेक्नोलॉजी, इल्म और न जाने क्या क्या हासिल हो चुका है, क्या आप समझते हैं ये कुछ देंगे? तो आप ख़ुद फैसला करें कि जंग कौन जीता है।

कालीन आप देख रहे हैं, इस कालीन को बुनने में इन्हें 7 साल लगे, और ऐसे बहुत सारे आप ये डिज़ाइन देख लें, आप इसकी ज़र्फ कारी को देख लें, आप इन रंगों को देख लें, तो आप क्या समझते हैं कि ये कौम इतनी आसानी से हार मानेगी? जिसके कालीनों के जो डिज़ाइन हों वो 2-2.5 हज़ार साल पुराने हों, तो उसको वो कौम हराएगी कि जिसे अभी बनने में भी 200 साल हुए? तो आप ख़ुद बताइए, जंग कौन जीता?

जैसा कि आप देखते हैं कि इनका कल्चर, इनकी कदीमी आर्ट, इनकी सारी चीज़ें, हत्ता कि ये मॉल है, मगर इस मॉल के अंदर अगर आप फिरदौसी के शेरों को देखें जो कि इन्होंने लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है कि अगर ईरान ना हो और अगर हम ईरान को अपना बदन ना दें तो कोई भी जो चीज़ है वो ज़िंदा रहने वाली नहीं है। और कहते हैं कि अगर हम इससे बेहतर है कि अपने सरों को कटा दें और सरों के कटे हुए पहाड़ बना दें, ये ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने मुल्क को दुश्मन को दें। मुझे बताएं कौन सा मुल्क या कौन सा कल्चर अपने मॉडर्न मॉल्स के अंदर भी अपने इस तहरीक को, अपनी इस मूवमेंट को बयान करता है।

ये इनके खून में पाया जाता है कि अपने मुल्क अपनी आइडेंटिटी का दिफा करना है चाहे दुश्मन कोई भी हो।

जैसे कि हमने आपको बताया कि इन्होंने हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, उसके अलावा इन्होंने यहाँ की इंडस्ट्रीज को भी बहुत हिट किया। जबकि आप जंग में जानते हैं, अगर जंग तो सिर्फ निज़ामी या फिर सोल्जर के साथ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को हिट किया, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को, कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग थी उनको हिट किया, मेडिसिन की फैक्ट्रीज़ को हिट किया, और हत्ता यहाँ तक के डेयरी जो फैक्ट्रीज थी, यानी दूध दही और रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल बनाती थी, उनको भी हिट किया। क्यों हिट किया? जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने हर फील्ड में अपने आप को एक कामयाबी के मकाम तक बना दिया था। और इस तरक्की का राज ये था कि जितनी इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी उतना ये तरक्की करते गए और तरक्की करते करते, और यही चीज़ दुश्मन को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकी फैक्ट्रीज़ को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने की कोशिश की, ताकि ये कौम जो है वो नुकसान में हो और अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके। मगर ये कौम, ये मिल्लत इमाम हुसैन की है, जिसका इरादा बदनों के कटने से नहीं रुकता।

ज़्यादातर किताबें लाइब्रेरी में फ़ारसी लिटरेचर और फ़ारसी कल्चर के बारे में हैं। इन्होंने अपने इस हेरिटेज को बहुत महफूज रखा हुआ है। एक मॉल में इतनी बड़ी लाइब्रेरी का होना खामखा नहीं है, टाइम खर्च होता है, पैसा खर्च होता है। जिस तरह मॉल में बाकी दुकानें आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करती हैं, उस तरह ये लाइब्रेरी भी ये बताती है कि ज़िंदगी में इल्म की और किताब की भी बहुत ज़रूरत है। और जो कौम

0: 61 हिजरी की करबला ने हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच कर ये बता दिया है। जो मकतबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शागिर्द होगा उसके बदन के टुकड़े तो बिखर जाएंगे मगर वो झुकेगा नहीं। खयाबाने किश्वर दोस्त से उठने वाली खाक ने आज के दौर में हक और बातिल को वाजे किया है कि जान का चला जाना नुकसान नहीं बल्कि हयात है। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्ला।
1: दुनिया कहती थी कि महलों में इस शख्स रहता है, कहते थे कि इसकी दुनिया में बहुत जायदाद है। कई लोगों ने कहा कि ये बंकरों में जिंदगी गुजारे, मगर वो शख्स यही कहता रहा कि जब मेरी सारी आवाम सड़कों पर या आम जिंदगी गुजारती है तो मैं क्यों बंकरों के अंदर चला जाऊं। हाँ, वो एक शख्स कि जो खलूस और इखलास के साथ रोज़े की हालत में अपने मौला की तरह अपने खाले के हकीकी से जा मिला, यकीनन रूह बदन से निकल गई मगर उसने ऐसी परवाज की आलम को अहाते में ले लिया। हर एक दिल उसके लिए उदास है। वो एक सादा सी जिंदगी गुजारते हुए वो एक आम इंसान की तरह कि जहाँ वो जानता था कि मेरी हुकूमत में अगर एक शख्स कम से कम गजा खा सकता है तो वो उतनी ही गजा खाता था। उसके घर में बिछा हुआ कालीन उसके इज़्ज़वाज का था, उसकी अपनी आमदनी उसकी किताबों के बेचने से होती थी, लेकिन वो इतना मजबूत था कि जब वो हर्फ निकलते थे तो दुनिया के सियासतदान की निगाहें उसी की तरफ होती थी। उसका एक इशारा होता था तो दुनिया की सुपर पावरें हिलना शुरू हो जाती थी, और यही वजह थी कि दुश्मन ने चाहा कि हमेशा इसको हस्फ किया जाए, मिटाया जाए, दिलों में नफ़रतें डाली जाएं, लोगों को निज़ाम के ख़िलाफ़ किया जाए। मगर लोग ये नहीं जानते थे कि जिसकी ज़िंदगी कुरान पर गुजरी हो, जिसकी अंगूठी पर लिखा हो इन्ना माया रब्बी, कि मेरा रब मेरे साथ है, तो जितना वो बदन में ताकतवर था उससे ज़्यादा वो ताकतवर तब हुआ कि जब रूह बदन से निकल गई। हिंदू हो, मसीह हो, सिख हो, चाहे मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो, चाहे कोई हिजाब करता हो या गैर हिजाब का हो, सबका दिल उसके लिए धड़कता है। 70-80 दिन होने वाले हैं मगर यहाँ आशिकों का एक तवाफ चल रहा है। रात सर्द हो चुकी है, हवा ठंडी है यकीनन, मगर खून की तपिश ने वजूद को गर्म रखा हुआ है, और आशिकान पूरे आलम से इस एक सड़क को कि जो तेहरान की एक सादी सी सड़क है आकर इजहार अकीदत करते हैं। और कितना गिरिया करते हैं कि काश हमने पहले पहचाना होता, हमें देर हो गई कि हमने अपने रहबर को ना पहचाना। हाँ, वो रहबर के जो अली का नौकर था।

0: जो खाक में मिला वो सांसों को एक नई उम्मीद दे गया, एक ऐसी बेदारी जो सरहदों तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया के हक तलबों के वजूद में नफूस कर गई, और इन सदाओं ने दुश्मन के गिर्द ऐसे तूफान को जन्म दिया कि किश्तियां आपस में टकरा गई। कामयाबी जदीद असला नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मत की बेदारी है जो इमारतों के गिरने से, खाक के बिखरने से खत्म नहीं होती। ये मकतबे इमाम हुसैन की निशानी है, जितने बदन गिरेंगे उतनी परवाज होगी।
1: आज हम उस जगह पर खड़े हैं कि जहां पर शायद आप इन पूरे तकरीबन 80 दिन होने वाले हैं, और ये कौम यहीं पर खड़ी हुई है। ये कौम चाहे वो मिसाइल लग रहे थे, चाहे वो दुश्मन के जहाज़ गुजर रहे थे, मगर ये कौम इस मैदान से, जिसे मैदान इनकलाब कहा जाता है, यहाँ से हटे नहीं हैं। और आज भी देख लें कि जब जंग थी तब भी यहीं पर थे, और जब सीज़ फायर है तब भी यहीं पर हैं, और कल अगर जंग होती है तो भी ये यहीं पर रहेंगे। ये जज्बा, ये शुजाअत, ये इस्तेकामत कहाँ से आई? ये कहीं से नहीं आ सकती। ये देख लें, ये सदा, ये फ़ज़ा, ये हैदर हैदर से आती है। ये हैदर के मानने वाले हैं, ये उसी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं कि जिन्होंने अपने बदन के टुकड़े तो करा दिए मगर अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। ये भी वो कौम है कि जो खड़ी है और जो खड़ी रहेगी, चाहे इनके घरों में लाशें उठें, चाहे मेनाब की बेटियों ने अपने आप को स्कूल की दीवारों के नीचे फना कर दिया, वो माएँ वो जनाजा लेकर भी बैठी हैं, मगर अभी तक जज्बा वही है और यही जज्बा रहेगा। यही इनकलाब है और यही इनकलाब जारी रहेगा, रहबर सैयद मुस्तफा खामनाई के साए में।
0: बशरियत जिसका सदियों से इंतजार कर रही है, वो जो मुंजिए आलम है, वो जो वादाए इलाही है, वो जो जमीन का असल वारिस है, वो जो कुरान की आयात का मिस्ताक है, बातने कायनात में जहूर हो चुका है। कौम की बेदारी ने दुनिया पर यह साबित कर दिया है, बस एक पर्दा उठना बाकी है, शर्त मैदान में खड़े रहना है। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, वो आपको दूर देखते हैं,

0: और टीवी एक्ट्रेस हैं मोहतरमा आजीता तुर्काश्वन। दावत करता हूं वो स्टेज पर आए आप सबके जबरदस्त इस्तकबाल के साथ।
1: अस्सलामुअलैकुम
0: मोहतरमा, खुश आमदीद।
1: शुक्रिया, मैं भी सलाम पेश करती हूँ आपकी खिदमत में और मोहतरम असातज़ा महफिल के नाज़रीन की खिदमत में।
0: सलामत रहे। कहाँ गई थी इस बार, कहाँ का ट्रिप था?
1: हम असल में गारे असहाबे कहफ गए थे और गार को करीब से भी देखा और मेरा ख्याल है कि सभी इस किस्से से आशना है।
0: किस मुल्क में?
1: गारे असहाबे कहफ तुर्की में है, शहर मिर्सिना।
2: माशाल्लाह।
0: वो एहसास और फीलिंग जो आप इस हकीकी माहौल में गईं, जिसका जिक्र खुद कुरान में हुआ है, कैसा था?
1: मेरे लिए ये वाकया और ये इलाही मुजज़ा बहुत ही ख़ास था, चूँकि दास्तान असहाब कहफ को हम सब ने सुना है, ख़ासकर जब उस पर सीरियल बनाया गया तो इसमें हमारी समझ और भी बढ़ गई। और मेरे लिए ये तो बहुत ही पुरकशिश था जो बचपन से गारे असहाब कहफ के बारे में सुनती आई हूँ, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुद वहाँ जा सकूँ और नज़दीक से गार को देख सकूँ। और वो मोजज़ा इलाही जो इस गार में पेश आया, मैं उसी जगह खड़ी होकर वो लम्हा महसूस कर सकूँ। और ये सब निशानी है, हिकमत, अजमत और मोजज़ा है इस किताब
2: का।
0: आपके पीछे मोहतरमा तुर्काश्वन पर्दे पर, ये वही एनिमेशंस हैं जो हमारी महफिल की टीम ने तैयार की है, और सच कहूँ तो ये काम किसी भी फॉरेन प्रोडक्शन से कम नहीं है। ये सब कुरानी किस्सों के फोकस से बनाया गया है। तो मेरी दरख्वास्त है, जब आप असहाब कहफ की कहानी सुन रहे हों तो इन तस्वीरों पर भी ज़रा तवज्जो रखें। यह पूरा दूसरा जहान एआई से बनाया गया है और आपको तारीख में और कुरान के किस्सों में पूरी तरह से ले जाता है। लुत्फंदोज़ हों, कोई और पॉइंट जो आप कहना चाहती हैं?
1: ज़रूर, मैं चाहूँगी कि हाजा आगा खासमियान तशरीफ़ लाएं और यहाँ असहाब कहफ की कहानी सुनाएं। और मेरा दिल चाहता है कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँ, क्योंकि वो वाकई हर लम्हा हमारे साथ रहे, सब्र के साथ, हौसले के साथ। जो भी सवाल, जो भी पूछना था, उन्होंने पूरी मोहब्बत से उसका जवाब दिया।
0: हजागा कासमियान के लिए तालियां। कासमियान साहब, ये शायद नाजरीन का भी सवाल हो कि महफिल वालों को इन तारीखी मकामात पर किस हद तक भरोसा करना चाहिए।
3: देखिए, इन सब की मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। मसलन अगर हम हज़रत नूह की कश्ती की बात करें तो उसके निशान कोहे जूदी की ढलानों में भी हैं और आरारात के पहाड़ों में भी, और इसी इम्कान को हज़रत अल्लामा तबातबाई ने तफसीर अल-मीज़ान में मज़ीद मजबूत किया है। हमारी मिसालें और भी हैं, जैसे बहर नजफ और दूसरे मकामात जिनका जिक्र मिलता है। लेकिन असल और अहम नुक्ता यह है कि मकसद ये नहीं है कि हम ज़िद करें कि बस यही जगह
0: यहीं पर
3: जी यही जगह है और कोई जगह नहीं हो सकती। असल में वो मकाम एक बहाना है ताकि हम ये बता सकें कि एक हकीकत वाकई मौजूद रही है। क्यों? क्योंकि कई बार कुरान में साफ पता भी दिया गया और फरमाया गया, इन्ना फीज़ालिका लआयातिल मुतवस्समीन, यानी ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो तलाश करते हैं, तो वो जाकर उन आसार को हासिल कर सकते हैं। और असल में ये सब इलाही निशानियों का सिलसिला है जो अब तक,
0: लेकिन बहरहाल हम सबसे ज्यादा मुमकिन जगह पर गए थे।
3: जी, हम सब उसी जगह जाते हैं जहाँ ज्यादा इम्कान हो और उसी पर काम करते हैं।
0: आए चलते हैं किस्से असहाबे कहफ की।

महफिल के तीसरे सीजन में एक अहम बात यह है, हमने खास डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम बनाए। फोकस था किस्से अंबिया पर। हमारी अजीज थिंक टैंक और कंटेंट टीम ने महफिल की, कुरानी मकामात को कलेक्ट किया, अलग किया और पूरी लिस्ट बना दी। फिर उन्हीं जगहों पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज शूट हुई मुख्तलिफ मुल्कों में। उनडॉस की नरेटर एक बासलाहियत फिल्म थिएटर

चूंकि अल्लाह के लिए कुछ भी अजीब नहीं होता, इसीलिए वो शुरू करता है किस्सा सुनाना। दास्तान क्या है? दकियानूस बादशाह के 6 मुशीर थे जिन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह फरमाता है कि ये सब जवान थे, हालांकि वो उम्र के हिसाब से जवान नहीं थे, लेकिन चूंकि जवान मर्द थे इसलिए अल्लाह ने उन्हें जवान कहा। जब इंसान अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाए तो अल्लाह उन्हें जवान कहता है। और इसी तरह आगाज होता है, इज अवल फितयतु इलल कहफी फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरना रशदा।

बगावत कर दी, अब क्या करें, एक ऐलान बरात कर दिया दकियानूस से भी, उसकी हुकूमत से भी, उसके जालिमाना तरीके से भी। अब सवाल यह है कि फिर करें क्या, एक अकेला आदमी कहाँ जाए। अगर अइम्मा हुदा को कहा जाता है कहफुल वरा, पनाह देने वाली हस्तियां, इसीलिए है। और कुरान कहता है वइज़ इतज़ल्तुमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फअवू इलल कहफ यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिहि वयुहयी लकुम मिन अमरिकुम मिरफका। अब जबकि तुमने बगावत कर दी, अब जबकि तुमने इजहार बराअत कर दिया है, अब जबकि ये काम कर दिया, तो क्या करो, जाओ गार की तरफ। फअवू इलल कहफ, कि क्या हो, यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिहि वयुहयी लकुम मिन अमरिकुम मिरफका, ताकि मैं तमाम उन आसाइशों और सहूलतों को कि तुम सोच रहे थे दकियानूस के महल, दकियानूस की हुकूमत में मिलेंगी, नहीं, गार में मैं तुम्हें वो आसाइश दूंगा जिसका तुमने गुमान भी नहीं किया होगा, वो काम करूंगा कि मंजिल तक पहुंच जाओ तुम।

0: 309 साल सोने के बाद जब ये बेदार हुए तो उन्हें खुद लगा कि शायद हम बहुत ज्यादा सो गए हैं। उन्हें भूख भी बहुत लगी थी और कपड़े भी कुछ अजीब गरीब से लग रहे थे, जैसे उनमें कुछ तब्दीली आ गई हो। قال قائل منهم كم لبستم, कितना सोए? قالوا لبسنا
1: يوما او بعض يوم,
0: قالوا لبسنا يوما او بعض يوم, शायद एक दिन या आधा दिन। लग तो रहा है कि ज्यादा सो गए हैं,
1: चकरा गए,
0: एक दिन तो सोए होंगे।
2: कब लबिस्तुम,
0: तिलावत कीजिए।

उनकी पहली टेंशन यही थी। फलयंजुर अय्युहा अज़का तअमन, जाओ देखो पाक खाना मिल भी रहा है या नहीं। देखें ये बहुत अहम नुक्ता है। एक शख्स नबी करीम के पास आया और कहा मैं चाहता हूँ मेरी दुआ कबूल हो। आपने फरमाया रिज़्क़ हलाल, यानी पाकीज़ा खाना और हलाल रोज़ी की तलाश, यही वो चीज़ है जो असाबे कहफ को असाबे कहफ बनाती है। अब ये बंदा शहर में दाखिल होता है, सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं। 309 साल गुजर चुके थे और उसके कपड़े भी बिल्कुल अलग ज़माने के लग रहे थे। तौहीद की निशानियाँ भी जा बजा कायम हो चुकी थी। वो आँखें मल रहा है, मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, मसला क्या है। इसी दरमियान वो सिक्का रखता है। लोग कहते हैं ये कौन सा सिक्का है, ये तो दकियानूस के ज़माने का है। यूँ उसका राज खुल जाता है, पकड़ लेते हैं, तुम कौन हो, मालूम हो जाता है ये उन्हीं गार वालों में से है। फिर पूरा शहर हिल जाता है, लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जिस खाने के लिए वो आया था उसी ने उसका राज खोल दिया। वो 309 साल सोए थे। गार में दाखिल होते ही ये बात वाजे हो जाती है कि दास्तान अब अपने अख्तिताम के करीब है। लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, सब घेर लेना चाहते हैं। और वो अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमने अपना काम कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हमारा सफ़र यहीं मुकम्मल हो जाए। और फिर वहीं उनकी जिंदगियां

यही वो जगह है जहाँ दास्तान ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता दरमियान में कुरान ने बयान किया है जो शान नुज़ूल से जुड़ा हुआ है। चूँकि पैगम्बर अकरम से सवाल किया गया था, क्यों मैंने कहा अहम है, दरमियान किस्सा कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि कुरान ने एक अखलाकी पैगाम दे दिया, ये हिस्सा बहुत अहम है। पैगम्बर से कहते हैं कि आप हमें असहाबे कहफ़ की दास्तान बताएंगे, फरमाया कल बताऊँगा। अगले दिन वही नहीं आई, उसके बाद भी नहीं आई, 15 दिन वही नाजिल नहीं हुई। लोग कहने लगे ये जनाब तो कह रहे थे कल बताऊंगा, तब यह आयत नाजिल हुई, वला तकूलन्ना लशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, कभी भी ये न कहो कि मैं कल ये काम जरूर करूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कहो कि अगर अल्लाह चाहे।

0: इसलिए इंशाअल्लाह हमेशा आपकी ज़बान पे रहना चाहिए। जो भी कहें, मैसेज भी भेजें, मैसेज भेज भी दिया हो तो आखिर में लिखें इंशाअल्लाह, भूलें नहीं।
1: बिल्कुल दुरुस्त।
0: इंशाअल्लाह यानी अल्लाह की मर्जी, यानी अल्लाह चाहे तो।
1: जबरदस्त।
0: ये थी दास्तान अस्हाबे कहफ।
1: बहुत शुक्रिया
2: एहसान।
1: इतनी ही जज्बाबियत के साथ। बहुत खूब।
2: जज़ाकअल्लाह
3: एहसान, माशाल्लाह।
1: और जाहिर है यह किस्सा तो बहुत तवील है, लेकिन यहाँ हमें बहुत मुख्तसर अंदाज में सुनाया कासमियान साहब ने। एक तफसीली पॉडकास्ट भी है, बल्कि कई पॉडकास्ट हैं जिसमें अस्हाबे कहफ का पॉडकास्ट 4 एपिसोड में इस किस्से को हाजागा कासमियान ने तफसील से बयान किया है, हामिद शाकिर निजात साहब की खूबसूरत तिलावत के साथ। इन दोनों मोहतरम हजरात के एजाज में अच्छा, अब वो अंदरूनी कैफियत किस्से में, बिलाखिर आपने बतौर रावी सफर किया है उस इलाके तक, अस्हाबे कहफ की दास्तान क्या थी?
4: मेरे लिए ये सफर शुरू होने से बिल्कुल पहले एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। शायद मेरी टीम के लोग इस बात से वाकिफ भी न थे। सफर से बस 2 दिन पहले मेरी वालिदा को फालिश का शदीद दौरा पड़ा।
1: अल्लाह अल्लाह।
4: और वो कोमा में चली गई। इसी दौरान मुझे कॉल आई कि आपको फौरन इस सफ़र पर जाना है। और अजीब बात ये थी कि ये सफ़र अस्हाबे कहफ की कहानी के साथ था। गहरी नींद, लंबी खामोशी, और मैंने सिर्फ एक ही दुआ की, बस अल्लाह मेरी माँ को वापस कर दे, मुझे उसकी तरफ लौटा दे। और मैं सफ़र पर निकल गई। रात के वक्त जब सब लोग कहते थे कि चलें खाना खा लेते हैं, मैं बहाना कर देती कि मैं थकी हुई हूँ और होटल में रुक जाती। मैं वहाँ अकेली बैठकर रोती रहती, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसने मुझे तोड़ कर रख दिया था। लेकिन अगली सुबह मैं खुद को संभाल लेती और बिल्कुल भी गिरोह को महसूस नहीं होने देती कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर जब मैंने पहली बार गार में कदम रखा, वहाँ मैंने अल्लाह को गवाह बनाया और कहा, या रब, जिसमें तेरी रजा तेरी खुशनुदी हो वही हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब सफ़र से वापस आई, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र कोमा से वापस आ गई। अलबत्ता अभी बेहिसी है, लेकिन डिस्चार्ज होकर घर आ गई है।
1: माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
4: मैं बस

0: इतना कहना चाहती हूँ कि इस सफ़र में जितना आगे बढ़ती गई, जितना कुरान की उन आयतों को गहरी समझ के साथ देखा, मैं सिर्फ एक नतीजे पर पहुँची, तस्लीम इलाही, इरादे इलाही, ज़मान इलाही और कुछ नहीं।
1: आपकी वालदा के लिए शफाए कामिल व आजिल की दिल से दुआ है।
0: इलाही आमीन।
1: इंशाल्लाह पूरी तरह से सेहतियाब।
0: इंशाल्लाह।
2: आमीन।
3: आमीन। आमीन।
1: बहुत शुक्रिया।
2: बहुत शुक्रिया।
1: हमेशा सलामत रहे।
0: आपका भी बहुत शुक्रिया।
2: उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा।
0: इलाही आमीन। इंशाल्लाह। और सच कहूँ ये डॉक्यूमेंट्री वाकई बहुत पुरकशिश है। मुझे यकीन है आप में से हर एक को पसंद आएगी, क्योंकि हमने कुरानी तारीख के दिल में यानी उस जमाने में वाकई सफर किया, ऐसी दास्तानों और इलाही निशानियों के साथ जो पहले कभी यूं नहीं देखे गए। दुआ है ये मेहनत कबूल हो बारगाह।
2: हमने तो सिर्फ चंद मनाजिर देखे और दिल वाकई मुतासिर हो गया। बहुत शुक्रिया।
0: मैं शुक्रगुजार हूँ।
2: सलामत रहे।
1: हमेशा खुश रहे। हमेशा सलामत रहे।
0: दिल से शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया।